0: क्या बात है, I really love Sherry man, मैनू बहुत पसंद से, पता नहीं की हो गया हुन घट गाने गांदा यार प्रधान, पर थोड़े लिए एक होर सवाल आ गया जी,
1: जी।
0: किसी ने बुझया ते मैं सिद्धे बोल दवा,
1: नहीं हले साडे को क्वेश्चन दो होर पए ने।
0: अच्छा दो सवाल होर पए ने, सो एक सवाल जी आ गया कि हस्बैंड मतलब किसी मतलब कोई तगड़ा मशहूर प्रोफेशनल बिजनेसमैन टाइप आदमी है?
1: नो।
0: अच्छा कोई लेना देना नहीं जी, सो
1: एक सवाल रह गया
0: ते एक सवाल भी मेरे को आया होया थोड़ा इत्थे, ओ इन्हां ने एह पुछया कि ओ मुसलमान ने?
1: नो।
0: ओके सो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस गाइस जेडे मुसलमान नहीं ने उन्हां दा हस्बैंड की करदा, वी डोंट केयर वी डोंट नो, ते 70s दे एक्ट्रेस ने, ते भेजो भाई जवाब, बस आही अज बुझ पाए हूं।
1: होर चलो, कुछ नहीं करता। एक क्लू होर दे दिनी है।
0: अच्छा
1: यार नहीं दसूंगी।
0: हां
1: उन्हां नू पद्मश्री भी मिल चुका है।
0: पद्मश्री भी मिल चुकी है। चलो किदा करो ना, एक सवाल दे दो एक्स्ट्रा। 11 शगन दा हुंदा यार?
1: नहीं नहीं
0: शगन वाला हुंदा है?
1: नो नो नो नो
0: यार इदा ना करो,
1: नोबडी नो।
0: अच्छा चलो फिर, नहीं गाइस मैं हुन थोड़ी हेल्प नहीं कर सकदा।
1: मैं ना सॉफ्ट हो जाना सी गाइस, सोडी जी ने आके ना
0: हाँ।
1: बड़ा जुल्म कीता, एक ता गंजी फिर उत्ते सिर ते जूं पवाती असी,
0: फिर
1: उत्तों उन्हां ने ओ जूनो उनो पवाती।
0: दैट इज सैड,
1: दैट इज मेरा दिल बलूंदर के तखता उन्हां ने,
0: हाय
1: मेनू कठोर करता।
0: ना ना ना ना ना मेरा
1: दिल पहला जिया नहीं रहा, हुन
0: कठोर हो गया। ओहो हो की ये है सतेंद्र सरताज है थोड़ा जवाब? मैनू तो लगा है,
1: मैनू नहीं पता सतेंद्र सरताज फीमेल।
0: सतेंद्र सरताज कुछ भी कर सकता है। इधर गुरजीत कौर गिल जी ने बच्चे मैं फोटो भेजतियां भाई, तैयार शियार होके साइकिल ते मंडली निकली पई है, क्या परसनैलिटियां कड्डियां पई है। तरनीत एंड सिवलिंग वेरी गुड, करो मौजा भी करो। और मैनू यार सरदार जी थोड़ा साइकिल बहुत वधिया लगा, क्या ऑरेंज कलर का टायर है, ब्यूटीफुल। ओए होए विलियां मार रहे ने, बल्ले बल्ले स्टंटमैन,
1: क्या बात क्या
0: बात, वेरी गुड वेरी गुड। ते हाँ जी फिर एक आया मेरे को जवाब, फिर मैं बोला कि ना बोला। अच्छा नहीं आ रहे आ रहे, वो टाइप कर रहे, लोग गुस्से च आ गए ने, सुनो कोई गल, ये तो मसला तो हल नहीं होया।
1: ये तो कोई गल कोई ना, इस मसले का ये हल तो कोई ना,
0: ये बहुत वैसे वधिया शर्मिला टैगोर।
1: नुप।
0: एक आंसर आया जी किरण खेर।
1: नुप।
0: सॉरी
1: किरण खेर कदों?
0: किरण खेर
1: कदों? किरण खेर कदों हो गया?
0: नहीं फीमेल तो है किरण खेर। अनुपम खेर जी, वेरी सॉरी।
1: नो मैं किरण, किरण एक पुराना एक्टर सी ना जो
0: किरण कुमार,
1: किरण
0: फिल्म वाला,
1: किरण कुमार नहीं सी ओदा नाम,
0: किरण कुमारी सी,
1: किरण समथिंग एल्स सीगा,
0: कुमार सी मन्या करो।
1: श्योर?
0: हाँ बेचारा गुम गया सीगा।
1: ये दैट्स वन दैट्स वन दैट्स वन दैट्स वन।
0: वैजंती माला?
1: नोप।
0: फिर बस कोई है ही नहीं, एक्ट्रेस ही नहीं है। एक्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड।
1: ओह 1942 दे बॉर्न ने, उन्हां दा जन्मदिन हुंदा 2 अक्टूबर दा।
0: अच्छा मुसलमान भी नहीं ना?
1: ना एंड एट करंट एज आई थिंक वो 83 ईयर दे ने।
0: सिमी गरवाल?
1: नो। ओ एक्टर एक्ट्रेस भी रह चुके ने, ओ डायरेक्टर भी रह चुके ने, ओ प्रोड्यूसर भी रह चुके ने।
0: हेमा मालिनी? पर उनका हस्बैंड था यार धर्मेंद्र सी।
1: नो नो नो नो नो, मैं थानू क्लू भी दित्ता सीगा विचों एक।
0: पद्मश्री वाला?
1: नो। आई आईया मैं कहां फसी,
0: फसे
1: बचा लो मुझे।
0: आशा पारेख लिखी?
1: यस।
0: ओए आशा आंटी,
1: आशा पारेख,
0: आशा करते हैं आपको आज का गंजी चुड़ैल बहुत अच्छा लगा होगा गाइस। यस आशा पारेख जी गंजे नहीं सके, उन्होंने सिर ते काफी बढ़िया वाल सके, ते मेरे ख्याल में काफी फिल्म है। दसो सी आशा पारेख बारे कुछ।
1: पहले मैं ना दसन लगी सी, मैं कह उन्होंने का बड़ा फेमस गाना है उफ ये आंखें।
0: केड़ी फिल्म है मैनू आशा पारेख दी जिहड़ी मैं देखी होएगी, मैनू नाम दसो कोई सब तो मशहूर फिल्म दा नाम दसो मैनू। देशबंधु भारद्वाज साहब ने भी बुझ लिया जी आशा पारेख, वेल डन वेल डन। भारद्वाज साहब तुसी बुझया, ते 439 जी तुसी भी बुझया, कवलजीत जी, दो पर्संस विन
1: अपने टाइम दी। शी इज वन ऑफ द फेमस हीरोइन और बहुत परफेक्शनिस्ट सी, इन्होंने कदे जिंदगी च ब्याह नहीं कीता।
0: अच्छा इन्हें परफेक्शनिस्ट से गए?
1: यस। उन्होंने ब्याह ही नहीं किया है।
0: अच्छा ताई ना।
1: यस यस यस। ते उन्होंने 1992 दे बिच मिले पद्मश्री अवार्ड मिले।
0: क्या बात है.
1: एंड स्टिल शी इज लाइक कदे कदे शोज वगैरह ते हुन शी शो अ स्पेशल अपीयरेंस यू नो डांस वगैरह ते कुछ किसे ते भी ओ जिथे ने एक सेलिब्रिटी नु बुलाना हुंदा है
0: ओ लाइफ टाइम अचीवमेंट देना हुंदा जिथे.
1: यस
0: अमिताभ बच्चन नु बड़े लाइफ टाइम अचीवमेंट मिले. अमिताभ बच्चन साहब रुके नहीं रहे ओ लगे हुए लगे हुए.
1: ओ नो नो नो नो नो धर्मेंद्र ता आई रिमेंबर लाइफ टाइम अचीवमेंट तो मुझे याद है एक कोई हो रहा सी बहुत पुराना अवार्ड्स वगैरह ना तो उन च धर्मेंद्र जी नु दिता लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. ही गॉट अपसेट ही सेड व्हाट डू यू मीन lifetime achievement award lifetime achievement awards mean you've done and dusted you're done and dusted. I haven't done and dusted yet. I'm still going and going sturdy. I said wow that's the is tarike da jawab milna chahida hai.
0: Dharam ji di personality is sahi na and paradarshita jo aaya so kya tha
1: ye bola na you know har kise nu hundi hai.
0: ਇਨਫੈਕਟ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
1: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ.
0: ਕਵਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਪਾਰੀ ਜੀ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਐਕਟਰੈਸ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਏ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ
1: ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਮੀ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਪਰੈਡ ਵਾਲਾ ਆ. ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਮਾਈ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਵਾਚ ਦਿਸ ਮੂਵੀਜ਼ ਨਾ.
0: ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਚਨਾ ਅਰਜ਼ਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਆਣ ਮਿਲੋ ਸਜਣਾ.
1: ਯੈਸ
0: ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ. ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਕਾ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ. ਉਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਿੰਗਾਰੀ ਕੋਈ ਭੜਕੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਕਟੀ ਪਤੰਗ ਫਿਲਮ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਡੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ I tell you us film de andar logic di jo hatya hui hai na wo main tumhe dasda
1: don't do it
0: sare suno so actress kaun si ki us film de andar main jo bhi sige abc hai na jo bhi main actress sige sanu dassa zaroor hai na kaun sige oh na train to utarde mere khayal na na ki to utarde kisi public transportation to utarde
1: yeah
0: ਠੀਕ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 70s ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘਬਰਾ ਰਹੀਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ
1: ਜੰਗਲ ਹੈ ਯਾ ਧੀਰਾ
0: ਵਾਓ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬੇਬੀ ਕਰਤਾ Beautiful.
1: ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਫੈਕਟ ਪਾਏ ਯਾਰ
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇ ਬੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਾੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਵਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾਇਜ਼ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣ ਕਰੇਗਾ ਖਾਏਗਾ ਪੀਏਗਾ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਉਹ ਉਤਰਦਾ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਬੈਗ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਐਕਟਰਸ ਦਾ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਬ੍ਰੋ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਖੇਡਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੈ
1: ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ
0: ਆਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਪਤੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਓਕੇ
1: ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਨਾ
0: ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਐਕਟਰਸ ਕੋਣ ਹੈ ਕਟੀ ਪਤੰਗ 'ਚ ਓਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਕਟੀ ਪਤੰਗ ਮੈਂ ਦੇਖੀ
1: ਯੈਸ
0: ਘੈਂਟ ਫਿਲਮ ਹੈ ਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 044-717-1617 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਸ਼ਾ ਪਾਰਿਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਉਂਗਾ

0: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-93-33
0: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
1: याद रखो 9077-9733
0: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
1: हर कदम तो आड़े नाल।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर, वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending। व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
3: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड़ सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक, ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपने बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300-151616, quicksignage.com.au। Business

वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा solutions.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430 123 394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
3: तुहाडा प्रभाव छोटे मौकियां विच देखा जा सकता है अते जीवन बदलन वाले मौकियां विच भी। ए रोमांचक अते विहारक, संपूर्ण अते उत्साहपूर्ण हो सकदा है। ए उन्ना ही निखड़वां हो सकदा है जिन्ने की तुसी हो। तां तुहाडे अपने तरीके नाल हर रोज तुहाडी चिजम दी योग्यता किसी दी जिंदगी नूं बेहतरी लई बदल सकदी है। अते तुहाडी भी सर्टिफिकेट तो लैके डिग्री तक इत्थे तुहाडे लई कोई ना कोई सही चिजम योग्यता है। हुणे अर्जी देण लई चिजम दी खोज करो। चिजम बेहतरी लई RTO 0260।
0: सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी तुहाडे ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493536042।
5: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले। हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है। डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD ऑन रोड्स ऑन अस, कंडीशन अप्लाई।
0: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरीबी टोयोटा।
6: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेरीबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरीबी टोयोटा, द स्मार्ट choice.
7: Insurance.

0: वर्कर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट गोल्ड लीफ डेरी.com।
3: टेंशन

0: हिप हिप
1: हुर्रे
0: हिप हां जी बहुत बहुत मुबारक हूं। खुश रहो, स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, मस्त रहो बच्चा, एंजॉय दिस एज, घर जानू खूब तंग करो।
1: बहुत सारिया मुबारक जिंद कौर, बहुत सारिया मुबारक जिंद कौर के पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, सारी एक्सटेंडेड फैमिली जिंद कौर के सैवंथ बर्थडे दियाँ। परमात्मा करे ये वाला साल और आने वाले बहुत सारे साल जिंद कौर लई बहुत सारिया खुशियां लैके आवे, बहुत सारिया तंदुरुस्तियां लैके आवे, बहुत सोहने सोहने प्यारे प्यारे उन्होंने दोस्त बनन, जिंदगी हमेशा अगे बढ़ते रहन और मां बाप का नाम रोशन करन। ये साड़ी तहे दिल तो अरदास है फॉर जिंद कौर। हैप्पी बर्थडे जिंद कौर फ्रॉम रेडियो हांजी 1674 AM।
0: यस यस यस, सिमरन भाजी लई एक शायरी आई है जी कि हथ फड़ के गिलास मैं हुंदा ना उदास, ये तो वह है जो उमरा तक साथ निभाउंदी है, तेरे आउन दी आस सानू बना दिता लाश, या तेरी जदों सीने अग लाउंदी है। वाह भाई वाह, लकी भाई बड़े क्रांतिकारी होए भाई आज तुसी।
1: यार इन्ना सोची इन्ना शेर सुन के ना मैनूं कोई जोक याद आ गया।
0: इको इन्नू तां कंप्लीट कर लंदो। इन्ना सोची ओ बेचारा शहर विच लटक्या पिया, उहनूं तूं बेला करो। ये ना सोची कि कबरां च मुर्दे ही ने जांदे, हर शाम तेरी याद दी कबर बनाउंदा है लक्की, गल वखरी के उठ पहले पैर ते तड़के, अगे की है भाई, पट कबर चो याद कड ले आउंदा है लक्की। वाह भाई वाह, लक्की आसी जी, बहुत बहुत
1: वेरी नाइस
0: हैवी शायरी, ते तुसी भी अगो अपना योग मारो ठा करके।
1: तुसी कदे ओ देखिया काउबॉय बुड्ढा देखिया?
0: मनदीप दे जवाक स्वीट वी ने ते इंटेलिजेंट वी, ताही इना एप्रोप्रिएट नाम दिता। वाह भाई वाह, क्या बात है। अगो लिखा पा कि देखो हसबेंड नू ग्रोसरी लैन भेजा, सैड एंड टायर्ड मैं आ, वाह मेरी भेने, बेचारा मेरा भाई आ। देखो देखो अपने ही पराए हुए, देखो मनदीप जी, ये तो गल ना है। चलो इट इज वॉट इट इज, ते हुण आपां ना इजाजत लैने आ, निकलदे आ छेती छेती
1: जी। असीं मांगदे आ इजाजत अज जान दी, और वादा करदे आ अगले फ्राइडे फिर तो आके फिर थोड़े नाल मस्तियां करन दी, पर इस मस्तियां दे दौरान कोई गलती भुल चुक रह गई होवे तां माफ कर देना, दोवें हथ जोड़ के माफी मांगदे आ, और अगली बारी कोशिश करांगे बेहतर कहण दा और बेहतर सुनाउण दा। इसे वादे नाल मांगदे आ जी इजाजत, मेरे वल्लों है
0: बाय बाय बाय बाय बाय जी। ते आह सुनो अमिताभ बच्चन जी की कहना चाह रहे, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे बाय बाय।

बीमार हूँ ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हूँ। फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216-OG-LONG-ROAD Hoppers Crossing Very B Toyota The Smart Choice। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
3: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
4: हाँ जी रेडियो।

0: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990 BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900 एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी BYD ऑन रोड्स ऑनर्स कंडीशन अप्लाई
1: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India, ya Pakistan. Sydney to India, ya Pakistan, kithe bhi ja sakti hai.
2: Attention, please. Dil kehta hai, kar jana hai. Flight search karke thak gaye. Switch karo, Hi-Fi Travel Stay. Your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo. 1300-533-311 te. Ya online book karo. hifitravels.com.au te.
3: Kitchen da style dull lagda? Bathroom vanity simple jya. Hun tension khatam karo. Aa gaya. ZJ Stone Mason. Paade karno banaye ekdam classy. Asi banaune ya? Designer stone bench tops for kitchen. Stylish vanity. Ate modern laundry. Oh vi porcelain ate marble nal. Jithe elegance mildi hai. Durability. नाल हुन ना सिर्फ कर पर तुहाड़ी पर्सनालिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन
4: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
2: क्यों हुआ
1: इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
2: काका जी टेंशन।

वही जो फोरेंसिक जांच की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि सरकार दे दूसरे सिस्टम्स भी प्रभावित हुए ने या नहीं। अल्बनीज ने सेम दे बारे जानकारी विस्तार दे विच सांझी करदे हां कहा कि मेडिकेयर स्टैटिस्टिक्स रिपोर्टिंग सर्विस पोर्टल इस पोर्टल दे उते गैर संवेदनशील डेटा ते आंकड़े मौजूद ने। सरकार ने तीन होर सिस्टम भी प्रभावित होंदे दसे ने। इस दे विच आस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ते दो सूबियां दी एजेंसियां जिससे न्यू साउथ वेल्स ब्यूरो ऑफ क्राइम स्टैटिस्टिक्स रिसर्च ते विक्टोरिया दे सेहत विभाग भी शामिल ने। अल्बनीज ने कहा कि अजिहे समय च मन्निया जा रहा है कि किसी की भी निजी जानकारी तक पहुंच नहीं बनाई गई है पर एक काफी हद तक प्रभावित हुए ने। उथी इस खबर तो बाद जे आस्ट्रेलिया दी दूजिया खबर की सांझ पाईए ते विक्टोरिया दी पार्लीमेंट दी तरफ तो नवा आईबैक जिहड़ा कानून पास किया गया यानी कि जिहड़ा करप्शन के खिलाफ एक एजेंसी बनाई गई है सूबाई एजेंसी जो कि विक्टोरिया दे विच बिग बिल्ड प्रोजेक्ट तो इलावा दूसरे प्रोजेक्टा के उत्ते जांच पड़ताल करेगी। इसकी फाइनल सिटिंग है विक्टोरिया दे पार्लीमेंट दी कार्रवाई तो पहला। दस दिए कि विक्टोरियन पार्लीमेंट दिया आखिरी यह पार्लीमेंट्री सीटिंग सैशन है क्योंकि उस तो बाद चोणा ने 2 नवंबर नु चोणा ने ते 17 नवंबर तो अर्ली वोटिंग शुरू हो जानी है। और इस तो पहला इस जड़ी आईबैक दी जांच रिपोर्ट है वह तो हले तक घटो घट जनतक नहीं होने लगी अगला साल तक का समा लगेगा। पर इस जांच के दायरे के हाले तक डेनियल एंड्रयूज ते जसिंटा एलन नु शामिल नहीं किया गया। इस खबर का विस्तार शाम वे भी तो साझा करा। उधर आस्ट्रेलिया दे विच बेरोजगारी दर बढ़ी है कोविड दे समय तो बाद 4.6% आस्ट्रेलिया दे विच बेरोजगारी दर जिहड़ी है वह देखण नूं मिली है। आस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दस्या है कि कोविड तो बाद आस्ट्रेलिया दे विच बेरोजगारी दर के अंदर इजाफे का जिहड़ा कई अलग अलग कारण है। इस दे विच कौमांतरी बाजार का दबाव भी महसूस किया जा रहा है पर इसदे असर भी देखण नूं मिलणगे आस्ट्रेलियन बाजार दे उत्ते। ओह इह है के आने वाले दिनों च जिहड़ी आरबीआई की बैठक होनी है उस ब्याज दरां दे अंदर इजाफा किया जा सकता है। इस किस्म के क्यास लग रहे हैं कहा जा रहा है कि आस्ट्रेलिया दे अंदर 60,000 तो वधेरे लोग कागजा दे उत्ते बेरोजगार ने। हो सकता है यह गिणती असल दे विच इस तो कितने ज्यादा हो। उथे विक्टोरिया दे विच इस वक्त जॉबलैस रेट भी लगातार बढ़ रही है। विक्टोरिया च बेरोजगारी दर 5.2% जान दे चल दे हां। देश दे विच सब तो बड़ा बेरोजगार सूबा विक्टोरिया बन चुके है। और आस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने स्टेट वाइज भी डेटा जारी किए जिथे देश दे विच बेरोजगारी सब तो ज्यादा है उथे ही विक्टोरिया दे पहले नंबर ते तस्मेनिया दूसरे नंबर दे उत्ते इस मामले च आंदा है जिथे 5% बेरोजगारी है ते न्यू साउथ वेल्स 4.3% दे नाल अगले नंबर दे उत्ते आंदा है। नैशनल जॉबलैस रेट जिहड़ी है उस दे विच सब तो ज्यादा बेरोजगार 0.2% विक्टोरिया सूबे दे विच लगातार पिछलियां 2 तिमाहियां दे विच वधे ने। आस्ट्रेलियन इंडस्ट्री ग्रुप जिहड़ा है उन्हां दी तरफ तो दस्या गया है कि नवंबर महीने दियां चोणां तो बाद सूबे दे विच बेरोजगारी दर दे अंदर हो सकदा एक बदलाव देखण नूं मिले बिजनेसिस दे विच एक कॉन्फिडेंस देखण नूं मिले। पर जिथों तक NSW दी गल है न्यू साउथ वेल्स दे विच तां हाले लागे दागे चोणां भी नजर नहीं आ रहीयां। इत्थे बेरोजगारी दा वधना आस्ट्रेलिया दे लई इक चिंता दा विशा हो सकदा है क्योंकि विक्टोरिया ते न्यू साउथ वेल्स दो ऐसे सूबे ने जिहड़े आस्ट्रेलिया दी आर्थिकता दी रीढ़ दी हड्डी मन्ने जांदे ने आर्थिकता नूं चलदा रखदे ने। और NSW ते विक्टोरिया च वधी बेरोजगारी पूरे देश की बेरोजगारी की औसत के उत्ते असर पा दिंदी है भावें कि दूजे सूबे बेरोजगारी इन्नी ना भी वधी होवे। उथे सरकार तो एक बार फिर तो यह मांग की जा रही है कि लगातार जिहड़ा कौमांतरी पद्धर दे उत्ते हालात बने हुए ने उसनूं देखदे हुए पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां दे विच जिहड़ा एक्साइज सरकार की तरफ तो लगाया जांदा उस दे विच कटौती की जाए क्योंकि आम तौर दे उत्ते आस्ट्रेलिया दे विच इस वक्त $40 तक टैक्स जिहड़े ने आस्ट्रेलियन लोकी ओह अपनी फैमिली कार दे विच फ्यूल टैंक फुल करन दे विच वेस्ट कर देंदे ने। वेस्ट तां नहीं कह सकदे पर टैक्स जिहड़ा इन्ना अदा करदे ने और ट्रेडीज़ नूं $60 तक जिहड़ा टैक्स सरकार नूं देना पै रहा।
ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ

0: Workers. Apni insurance thi har load le. Yaad rakho, bas Amrinder Gidda. Call 0491-999-555.
1: Gidda Insurance.
0: Sharta lagu.
2: Je tusi bimar ho, ta AI cool nahi, doctor cool jaane ho. Phir kanuni masle vich, faisla khud kyun? Yaad rakho, delay in law is damage in life. फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी, कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au
0: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: কে?
1: আহো জি আহো,
0: অক্ষরা জুয়েলার, আপনি দুটি লোকেশন 56 গারফিল্ড রোড, ইস্ট রিভারসন উইচ উই তোহাডি সেবা ਵਿੱਚ
2: अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: समझ लो कि ओना ऑर्डर लेने ले गए
1: हैं।
0: रेडियो स्टूडियो छट के गए नीचे ऑर्डर पकड़ने। ओना के टाइम मैं कल्ला जी बोलता हूँ मतलब शी इज आउट।
1: यस
0: हो गया तो की सुनाऊंगे आज?
2: आज मैं सुनाऊंगी एक बोली।
1: ओके
0: बोली बोली।
2: चौड़ा वाला पानी नी मैं बुआ है अगे डोलिया, चौड़ा वाला पानी नी मैं बुआ है अगे डोलिया, आंदा
1: चांदा तिलक गे फिसल।

0: बले बले बले बले बले
1: वेरी नाइस मन्नत,
0: वेरी वेरी नाइस,
1: बड़ी रियल लाइफ सिचुएशन दे ऊपर तुसी बोली सुनाई है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच,
2: थैंक यू फॉर द गल कर ले।
1: कराओ जी, कराओ।
2: सशिकाल वीरे जी ना ये नोनी आंटी जी,
0: सशिकाल फते जी, की हाल चाल ने,
1: किवें साडा फास्ट बॉलर,
0: बहुत बहुत बढ़िया जी। तुसी ब्रेकफास्ट कीता के हले नहीं, तुसी कीता
2: नहीं, ऐसी करना
0: की करना जी, की करना, टेल मी टेल मी टेल मी,
2: पता नहीं,
1: ओए सरप्राइज,
0: आई एम एक्साइटेड टू नो,
1: ओ यार
2: रोज सानु सरप्राइज मिलता है एक्सेप्ट संडे, क्योंकि सी आधा चूज करके खा सकते हैं।
1: ओ वाह, वेरी नाइस,
0: वेरी नाइस,
1: क्या बात है भाई
0: यार,
1: आ बढ़िया आइडिया।
0: आई विश मेरी मम्मी थोड़ी मम्मी हुंदी,
1: हैं
0: मेरी मम्मी हर रोज, मेरी मम्मी हर रोज सानू परौंठे वड़े दिंदी हुंदी सी, बस खाओ परौंठे, खाओ परौंठे, दही नाल खाओ परौंठे, मक्खन नाल खाओ परौंठे,
1: चाह नाल खाओ परौंठे,
0: चाह नाल खाओ परौंठे,
1: लस्सी नाल खाओ परौंठे।
2: वेरी लकी, सानू नवीं नवीं चीजां मिलदियां जिहड़ियां मैनूं जमा नहीं वधिया लगदियां।
1: हाए,
2: आई प्रेफर परौंठे मच बेटर,
1: परौंठे मच बेटर का बंदा खाना, खाना कंफर्टेबल जा होना चाहिए हर बारी।
0: चल मन फतेह, मेरा पुत्तू बन जा, तू मैं परौंठे बना के खिलाया करूंगी हर रोज, कदे कदे आलू दे, कदे गोभी दे, कदे प्लेन परौंठे,
1: ओए बल्ले,
0: हां पनीर वाले परौंठे भी मैं बढ़िया बनानी है, कीमे वाले परौंठे भी मैं बढ़िया बनानी है।
1: वाह क्या बात है नूनिया जी, वेल डन, प्राउड ऑफ यू। देखना कल मैच, वेखना कहंदे फाइनल है कल एएफएल दा, फुटी दा वेखदे हो?
2: नहीं, आई डोंट लाइक फुटी।
1: अच्छा नहीं यार, हजे थोड़ी ना लाइक ने सी लाइक करनी चाहिए,
2: फुटी इज नॉट अ गुड, क्रिकेट इज द बेस्ट।
1: ओ तो फिर बस अब अगले हफ्ते मैच जो लाना तुसी देखियो फिर मेरी बॉलिंग, जो मैं गूगलियां पाईया ना, ओए होए होए होए होए होए होए, मैं बॉल थानू पानी है जाके बैक अंपायर ते चल जानी, इन्नी तगड़ी स्पिन होनी है, थोड़े तक पहुंचनी नहीं बॉल, इन्नी हैवी स्पिन कराई दी आपा,
0: आपा रोंडी पिट लेनी है।
2: स्पिन बढ़िया वाली थी, बढ़िया उड़ गया, पर मैं तो ये ते मेनु आउट नहीं कर सकदे।
0: हां जी हां, तुसी आउट नहीं कर सकदे,
1: नहीं नहीं थोड़े वास्ते ना, असी
0: असी साडे फते नु
1: असी प्लेयर मनाया,
2: असी मैच रखया वा।
0: अच्छा मैं ता फते वाली साइड ते होना है,
1: नहीं एडल्ट्स वर्सेस किड, ना तुसी एडल्ट हो, तुसी साडे वाले लो ही खेल,
0: मैं ता किड
2: हां, नहीं नहीं। अच्छा क्योंकि जिहड़ी असीस आ ओ अंकल दी साइड च, सोनिया दी साइड दी साइड च बन
0: सकदा। अच्छा यस फते, आई लव यू,
1: क्या बात है, चलो ठीक है, ये मैं जान के कीता है, माड़े खिडारी है ये, मेरी माइंड गेम सीगी, ऑस्ट्रेलियन माइंड सेट।
0: नो नो फते फते, मैं बहुत सोनी रोंडी पिटदी हां,
2: सारी डल्टा नु चला चला मार दे सी।
0: हां यस,
1: हुण ते यार हुण ते बस मैच रख ही लो,
0: रख ही लो,
1: रख ही लो,
2: तुसी सारी लंबे होने पर मैं उद्दू भी उच्ची मार देनी हो।
1: हां
0: यस, आई एम प्रीटी प्रीटी श्योर,
2: अड़ी इन्नी उच्ची थोड़ी तो शॉट नहीं मारी, अड़ी इन्नी उच्ची, सारे डल्ट लेदर बहुत डर दे आ, पापा भी
0: यस,
2: या पापा ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਨਕੋਚੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ,
0: ਨਕੋਚੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਫਤਿਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਚ ਹੋਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਤਕਧਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਰਨ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ।
1: ਨੋਨੀਆ ਏਦਾਂ ਕਰੂੰਗੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਯਾਰ,
0: ਇਹ ਸਾਡੀ,
1: ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ
0: ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਆ,
1: ਇਹ ਮੈਚ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ
2: ਰਹੀ ਹੈ। ਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਦੂਰ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰਨ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ,
0: ਯੈਸ
2: ਹਾਂ ਸ਼ੇਰੀ ਦੀ।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: वाह भाई वाह,
1: वाह जी वाह,
0: क्या बात है। ते हाँ जी 044-717-1674 तुसी कॉल भी कर सकते हो, साडे नाल सांझा कर सकते हो थोड़े नाल वीक च सब तो वधिया की होया की नहीं होया। यू कैन टेल अस दैट, सानू शायरियां सुना सकदे हो, गाने गुने सुना सकदे हो, नहीं तो मैं थोनू एक गल दसा, मैं थोनू एक गाना सुना मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं बहुत ना जज्बाती होके सुनता सीगा।
1: दैया दैया मैं कहां फसी,
0: नहीं जहां भी फसी तुम ये सुनेगी, शायरी मान बोलेगी कि तुम डिस्क में कली क्यों नहीं लगाती है।

0: क्या बात है, I really love शहरी मान, मैं बहुत पसंद से, पता नहीं क्यों हो गया, हुन का ठिकाने का अंदा यार प्रधान। पर थोड़े लिए एक और सवाल आ गया जी, किसी ने बुझया तो मैं सीधे बोल दवा,
1: नहीं हले थोड़े को क्वेश्चन दो होर पे ने।
0: अच्छा दो सवाल होर पे ने, सो एक सवाल जी आ गया कि हस्बैंड मतलब किसी मतलब कोई तगड़ा मशहूर प्रोफेशनल बिजनेसमैन टाइप आदमी है?
1: नो।
0: अच्छा कोई लेना देना नहीं जी, सो
1: एक सवाल रह गया।
0: ते एक सवाल भी मेरे को आया होया थोड़ा इत्थे, ओ इन्होंने यह पूछा कि ओ मुसलमान ने?
1: नो।
0: ओके सो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस गाइस जेडे मुसलमान नहीं ने, उन्हें दा हस्बैंड की करदा? वी डोंट केयर, वी डोंट नो। ते 70s दे एक्ट्रेस ने, ते भेजो भाई जवाब, बस आही अज बुझ पाए हूं, होर कुछ नहीं कर पाए।
1: एक क्लू होर दे दिनी है।
0: अच्छा
1: क्लियर नहीं दसूंगी।
0: हां
1: उन्हां नु पद्मश्री भी मिल चुकिया है।
0: पद्मश्री भी मिल चुकिया। चलो एक किद्दा करो ना, एक सवाल दे दो एक्स्ट्रा। 11 शगन दा हुंदा यार?
1: नहीं नहीं
0: शगन वाला हुंदा है?
1: नो नो नो नो
0: यार इदा ना करो,
1: नोबडी नो।
0: अच्छा चलो फिर, नहीं गाइस मैं हुन थोड़ी हेल्प नहीं कर सकदा।
1: मैं ना सॉफ्ट हो जाना सी, सोडी जी ने आके ना बड़ा जुल्म किया। एक ता गंजी फिर उत्ते सिर ते जूं पवाती असी, फिर उत्तों उन्होंने ओ जूनो उन्नो पवाती।
0: दैट इज सैड,
1: दैट इज मेरा दिल बलूंदर के तखता उन्होंने,
0: हाय
1: मेनू कठोर करता।
0: ना ना ना ना ना,
1: दिल पहला जिया नहीं रहा हुन कठोर हो गया।
0: ओ हो की यह सतेंद्र सरताज है थोड़ा जवाब? मैनू तो लगा है,
1: मैनू नहीं पता सतेंद्र सरताज फीमेल।
0: सतेंद्र सरताज कुछ भी कर सकता है। इधर गुरजीत कौर गिल जी ने बच्चे मैं फोटो भेजती भाई, तैयार शियार होके साइकिल ते मंडली निकली पई है, क्या परसनैलिटियां कड़िया पई है। तरनीत एंड सिवलिंग वेरी गुड, करो मौजा भी करो। और मैनू यार सरदार जी थोड़ा साइकिल बहुत वधिया लगा, क्या ऑरेंज कलर का टायर है, ब्यूटीफुल। ओए होए विलियां मार रहे ने, बल्ले बल्ले स्टंट मैन,
1: क्या बात क्या
0: बात, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी फिर एक आया मेरे को जवाब, फिर मैं बोला कि ना बोला। अच्छा नहीं आ रहे आ रहे, और टाइप कर रहे लोग गुस्से च आ गए ने, सुनो गल ये तो मसले का हल नहीं होया।
1: ये कोई गल कोई ना, इस मसले का ये हल तो कोई ना,
0: ये बहुत वैसे वधिया शर्मिला टैगोर।
1: नुप।
0: एक आंसर आया जी किरण खेर।
1: नुप।
0: सॉरी
1: किरण खेर कदों?
0: किरण खेर
1: कदों? किरण खेर कदों हो गया?
0: नहीं फीमेल तो है किरण खेर। अनुपम खेर जी, वेरी सॉरी।
1: नो मैं किरण, किरण एक पुराना एक्टर सी ना जो
0: किरण कुमार,
1: किरण
0: किरण फिल्म वाला,
1: किरण कुमार नहीं सी ओदा नाम,
0: किरण कुमारी सी,
1: किरण समथिंग एल्स सीगा,
0: कुमार सी मन्ने करो।
1: श्योर?
0: हां बेचारा गुम गया सीगा।
1: ये दैट्स वन, दैट्स वन, दैट्स वन, दैट्स वन।
0: वैजयंती माला?
1: नोप।
0: फिर बस कोई है ही नहीं, एक्ट्रेस ही नहीं है। एक्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड।
1: ਉਹ 1942 ਦੇ ਬੋਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ।
0: ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ?
1: ਨਾ ਐਂਡ ਐਟ ਕਰੰਟ ਏਜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ 83 ਈਅਰ

0: हिप हिप हुर्रे हिप हिप
1: हुर्रे
0: हिप हिप
1: हां जी
0: बहुत बहुत मुबारक हूं खुश रहो स्वस्थ रहो आनंदित रहो मस्त रहो बच्चा एंजॉय दिस एज घर जनु खूब तंग करो
1: बहुत बहुत सारी मुबारक जिनकर नु बहुत सारी मुबारक जिनकर दे पेरेंट्स नु दादा दादी नु नाना नानी नु सारी एक्सटेंडेड फैमिली नु जिनकर दे 7th बर्थडे दिया परमात्मा करे ए वाला साल और आने वाले बहुत सारे साल जिनकर ली बहुत सारी खुशियां लेके आवे बहुत सारी तंदुरुस्तियां लेके आवे बहुत सोहने सोहने प्यारे प्यारे उन्होंने दोस्त बनन जिंदगी च हमेशा अगे बढ़ते रहन और मां बाप का नाम रोशन करन ये साड़ी तहे दिल तो अरदास है फॉर जिंद कौर हैप्पी बर्थडे जिंद कौर फ्रॉम रेडियो हाँ जी 1674 AM
0: यस यस यस सिमरन भाजी लई एक शायरी आई है जी कि हथ फड़ के गिलास मैं हुंदा ना उदास ये तो वो है जो उमरा तक साथ निभाउंदी है तेरे आउन दी आस सानू बना दिता लाश या तेरी जदों सीने अग लाउंदी है वाह भाई वाह लकी भाई बड़े क्रांतिकारी होए प्रकाश तुसी
1: यार इन्ने इन्ने सोची इन्ने इन्ने शेर सुन के ना मैनू कोई जोक याद आ गया
0: एक मैं इन्नू कंप्लीट कर लूं इन्ने सोची वो बेचारा शहर विच लटक्या पया उन्नू तो पहले करो ए ना सोची कि कबरां च मुर्दे ही ने जांदे हर शाम तेरी याद दी कबर बनाउंदा है लक्की गल वखरी के उठ पहले पैर ते तड़के अगे की है भाई पट कबर चो याद कड ले आउंदा है लक्की वाह भाई वाह लक्की आसी जी बहुत
1: वेरी
0: बहुत
1: वेरी नाइस
0: हैवी शायरी ते तुसी भी अगो अपना योग मारो ठा करके
1: तुसी कदे ओ देखया काउबॉय बुड्ढा देखया
0: मनदीप दे जवाक स्वीट वी ने ते इंटेलिजेंट वी ताही इना एप्रोप्रिएट नाम दिता वाह भाई वाह क्या बात है अगो लिखा पा कि देखो हसबेंड नू ग्रोसरी लैंड भेजा सैड एंड टायर्ड मैं आ वाह मेरी भेने विचारा मेरा भाई आ देखो देखो अपने ही पराए हुए देखो मनदीप जी ये तो कोई गल ना चलो इट इज वॉट इट इज ते हुन आपा ना इजाजत लैने आ निकलदे आ छेती छेती
1: जी असी मांगदे आ इजाजत अज जान दी और वादा करदे आ अगले फ्राइडे फिर तो आके फिर थोड़े नाल मस्तियां करन दी पर इस मस्तियां दे दौरान कोई गलती भुल चुक रह गई होवे तां माफ कर देना दोवें हाथ जोड़ के माफी मांगदे आ और अगली बारी कोशिश करांगे बेहतर कहण दा और बेहतर सुनाउण दा इसे वादे नाल मांगदे आ जी इजाजत मेरे वल्लों है
0: बाय बाय बाय बाय बाय जी ते आह सुनो अमिताभ बच्चन जी की कहना चाह रहे मैं नहीं कह रहा वो कह रहे बाय बाय

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले। हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990। BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990। ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है। डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD ऑन रोड्स ऑनर्स।
2: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी लै जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे आपणिया दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर के होर नेड़े महसूस करो।

0: ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग तुन्ना ज्वेलर्स भरोसे दी निशानी
1: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो
0: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय लई हुन नवा बीवाईडी कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल बीवाईडी सी लाइन 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990 बीवाईडी सी लाइन 8 डायनामिक एफडब्ल्यूडी सिर्फ $56,990 ते बीवाईडी शार्क 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900 एक खास ऑफर 1 अगस्त तो 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लई है डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक होर जानकारी लई आज ही बीवाईडी कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी बीवाईडी On roads, on us. Conditions apply.
1: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो
2: आ किथे वज गई तेरी गड्डी
3: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे परदेस विच समझाऊंगा किवे
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते सिंक स्मैश रिपेयर
4: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मैनू भी दस दे सीक्रेट
5: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com
6: किचन दा स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन
1: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो
7: टेंशन निधि टेंशन
8: की होया
7: एथे इमीग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
8: काका जी टेंशन छड्डो फोन चको कॉल करो VY इमीग्रेशन नु जिथे इमीग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
7: या 90-77-97-33
8: या ईमेल info@vy immigration.com.au
7: याद रखो 9077973
8: VY immigration and education consultant
7: हर कदम तुहाडे नाल
9: ओ पाजी एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने
10: हुन टेंशन छड्डो जी गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान बिजली दा बिल घट टेंशन भी घट
9: फिर लवाइए किथों
10: सन करंट वालिया कोलों 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी
9: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-01-246

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी हाँ जी
3: हाँ जी रेडियो

खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे की निशानी। ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय लिए, हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त तो 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है, डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी लिए आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD ऑन रोड्स ऑनर्स, कंडीशन अप्लाई।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-500-500
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 90779733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: हां जी।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुग निना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आएंगे लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी। ऑन रोड ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले। हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है। डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD On roads, on us. Conditions apply.

वक्त न पाया का दिया जे लिखन ले कुरान हितवार ना जोगी जान रुत महा ना कोई जा करता सिर ठीक को साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आख है एक दू एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक देखो आपो जाने अगे गया न सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए तां लिखी है लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अत्ते वाह पवे समुंद न जानिए समुंद सा सुल्तान गिरिया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करने दे न अंत अंत न वे

ना पाए जाए। ए अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे वेकार, केते लैले मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार। ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाए आखन पाए, ओ जाने

तीरे सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पौ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तित काल, करिए शब्द सची टकसाल।

सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पर उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेदर्क तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मरण महीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्त्यो सुजंभव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकुदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेयन पे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवि उचित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पर आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अना

कालांकार अनुभूत अंग अभावंगत में तो पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदिष्टे तर्म सर्वां परनांडिये अंडंड बांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभ जुभेश के आगा जिकर्म के आ भंज भरम के आ

तंग कृति है कि छत्रंग छत्री है कि ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है कि आप अभेव है कि चक्रंग बहीन है कि एक अधीन है कि रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैब गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राजग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दानी है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देश के सर्वत्र पैसा के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पैसा है के सर्वत्र मानी है सदैव प्रदानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है

के सरबंग कलीमा के परमंग फहीमा के अकाल अलामे के साहिब कलामे के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलामे सली खुदमदामे गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीज़ुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीज़ुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुकुट भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिभादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे त्रिभुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी प्रवास है निरकत प्रवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत प्रवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वहंता सर्वगंता सर्वख्याता सर्वज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साक शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसन चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकम परनास है सुमस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है सुमस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकम परनास है बिस्तल निवास है के सर्वल गवन है के हमेशल रवन है तमाम तमीज है समस्त अदीश है परंग परंग ईस है समस्त अदीश है अदेसल अलेख है अभेसल अभेक है जमीन जुमा है अमी कुमा है करीमल कुमाल है के जुर जुमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमितो भूत है के अमितो प्रसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अभंग है मद भार छंद तो प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मन मन सनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनाश मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करना ले आयार काले है कल खंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपात्व है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीकृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलघायक है विश्वम्भर है करुणालय है निर्मनायक है सरूपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म बस है जस के जस है पुजांग पुरा छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक श्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेक अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे पुयांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयम्बम सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूप।

0: नहात फिरयो लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच को सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंगले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सबे तुम कावो आप हाथ दे मोय बचावो सुखी वसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिये सब बैरन को आज संगरिये पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर जाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिया स्तुजो करियो रच्छा राख लो।

पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचान, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरत निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पैदा।

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंतन पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी, कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्टि दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आवरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख्त है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

0: सन्मुख सिख कोई जीव रहे गुरु नाले, गुर के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मे समाले, आप छड सदा रहे परने गुरबिन अवर न जाने कोए। कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए,
1: जे को गुर तेवे मुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे, पावे मुक्त ना होर थे कोई पुछो बबे किया जाए। अनेक जूनी परम आवे बिन सतगुर मुक्त ना

सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जाने तत्तै सार न जाने गुरु बाजो तत्तै सार न जाने तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनू अंत दिन हर

अगन सवि को जई करता खेल लचाया जांत सुभाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास, जो आपके दिन की शुरुआत अध्यात्म के साथ करने का प्रयास करता है। हम सब मंदिर या गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने तो जरूर जाते हैं, जाते हो ना? धन्यवाद, आपके दिल से हां की आवाज मुझे सुनाई पड़ गई है। तो आपने दान भी अवश्य किया होगा, करना भी चाहिए। हमें हमारे शास्त्र अपनी आमदनी का दसवंत यानी दसवां हिस्सा भगवान की सेवा में दान दक्षिणा में देने के लिए कहता है। मैंने भगवान के नाम पर 2000 रुपए का दान दिया। मैंने शुद्ध देसी घी के 125 किलो लड्डू चढ़ाए। मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, किंतु भगवान अभी भी मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे। क्या पूरी सृष्टि के रचयिता परम पुरुष परमात्मा भगवान हमसे ये सब मांग रहे हैं? नहीं भाई साहब, हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। हमारे धन के लालची थोड़ा है भगवान, ये हमें समझना पड़ेगा। ना ना ना ना, ऐसे कैसे? जब तक आपको शास्त्रों से इसका प्रमाण ना लाकर दूं, तब तक आप थोड़ा मानोगे। चलिए बताता हूं, इस छोटे से अंतराल के बाद आप जुड़े रहिए पुण्य दर्शन के साथ।

0: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन
1: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट
2: ने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए
3: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए
1: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन तबू श्रिया सरन जयदीप अलावत एंड मेनी मोर
4: इस बार खतरा कब कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है
1: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
4: Because the story has not yet been finished. The last part is left.
1: Overseas release by Zee Studios.
5: Tut Penny English ne. Dekho apni nedle cinema karante vich 25 September 2026 nu.
6: है पुत्र पहले मैंने अंग्रेजी बोल के दिखा
7: आई हैव मेनी काओ बट फेवरेट बेस्ट काओ लाली ही हैव फोर लेग टू ईयर टू आई वेरी गुड शी वेरी फास्ट काओ
6: हूँ मेरी जेठानी नू पता लगू कि साडे घरे भी अंग्रेजी आ
7: तुसी अरदास भी अंग्रेजी च करदे हो
8: ना पुत्र इंसान नू परमात्मा नाल गल करन लई किसी जुबान दी लोड़ थोड़ी पैंदी है

आप कर रहे हैं पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास और आज श्रीमद् भागवतम महापुराण के 10वें स्कंद से एक बड़ी ही सुंदर कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। क्या वो हमारे 1.25 किलो लड्डू या दान की राशि लेकर प्रसन्न होते हैं? चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों में से एक सत्यभामा थी। वे अत्यंत सुंदर और बहुत धनवान थी। इसके लिए उन्हें अपने धन और सौंदर्य पर थोड़ा अभिमान भी था। हालांकि वे कृष्ण से बहुत प्रेम भी करती थी। एक दिन देवऋषि नारद मुनि उनके पास आए। नारद मुनि ने उनसे कहा, सत्यभामा जी, लोग कहते हैं कि रुक्मणी देवी कृष्ण से आपसे भी अधिक प्रेम करती है। रुक्मणी देवी भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। यह सुनकर सत्यभामा को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि वे कृष्ण को बहुत प्रेम करती है, किंतु नारद मुनि तो सब जानते हैं। उन्होंने सत्यभामा का अहंकार तोड़ने के लिए उसे और उकसाया, देवी तुम कितना दान दे सकती हो? वो बोली, मुनिवर, आप जितना चाहें उतना धन, हीरे मोती सब दान कर सकती हूं। तब नारद

साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रख दी, यदि सत्यभामा ऐसा करने में असफल रही तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण को नारद मुनि को उनकी संपत्ति के रूप में देना होगा। सत्यभामा को अपने अपार धन पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो तुरंत इस शर्त के लिए तैयार हो गई। उन्होंने एक बड़ा तराजू मंगवाया और भगवान को उसके एक पलड़े में बैठा दिया। दूसरे पलड़े पर सत्यभामा ने अपना सारा सोना, चांदी, हीरे, मोती और अनेक आभूषण एक एक करके रखना आरंभ किया। देखते ही देखते तराजू के उस पलड़े पर बहुत सारा धन जमा हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात क्या हुई, थोड़ी देर में बताता हूं। मैं यूं गया, यूं आया। आप सुनते रहिए, आप जुड़े रहिए पुण्य दर्शन के साथ।

0: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।
1: टुट पैणी इंग्लिश ने देखो अपनी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच 25 सितंबर 2026 नूं।
2: है पुत, पहला मैंने अंग्रेजी बोल के दिखा।
3: आई हैव मेनी काओ बट फेवरेट बेस्ट काओ लाली। ही हैव 4 legs, 2 ears, 2 eyes, वेरी गुड शी वेरी फास्ट काओ।
2: हुण मेरी जठानी नूं पता लगू कि साडे घरे भी अंग्रेजी आ गई।
4: तुसीं अरदास भी अंग्रेजी च करदे हो?
5: ना पुत, इंसान नूं परमात्मा नाल गल करन लई किसी जुबान दी लोड़ थोड़ी पैंदी है।
6: स्टार स्टूडियो 18 एंड पैनोरमा स्टूडियोज प्रोडक्शन प्रेजेंट्स।
7: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
8: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
6: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
9: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
6: द एंड वी've बीन वेटिंग फॉर दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर।
9: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
6: ओवरसीज रिलीज बाय जी स्टूडियोज।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दास। तो श्री नारद मुनि की शर्त के अनुसार सत्यभामा को श्री कृष्ण के भार जितना धन दान करना था, यदि नहीं तो वो कृष्ण को दान कर देंगी। तो एक तरफ सारा धन रखा दूजी और श्री कृष्ण। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि तराजू का पलड़ा जरा सा भी नहीं हिला। जितना भी धन रखा जाता, भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा फिर भी भारी ही रहता। धीरे धीरे सत्यभामा को डर सताने लगा, कहीं वे सच में श्री कृष्ण को खो न दे। आखिर सत्यभामा, जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों में से एक थी, उसने अपने पहने हुए आभूषण भी तराजू में रखने आरंभ कर दिए, किंतु तराजू एक इंच भी नहीं हिला। अब कृष्ण को खो देने के डर से उन्होंने अपना सारा अभिमान छोड़ दिया और रुक्मणी देवी के पास गई। रुक्मणी देवी भी श्री कृष्ण की पत्नी है। उन्होंने सारा धन को पलड़े से खाली करवाया। उन्होंने एक तुलसी का पत्ता तोड़ा, आंखें बंद की, भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया और उसे भक्ति के साथ तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया। केवल एक तुलसी का पत्ता, सोचिए क्या हुआ। सच्ची भक्ति के साथ चढ़ाया गया वो एक तुलसी का पत्ता भगवान श्री कृष्ण के वजन से भी भारी हो गया और पलड़ा उठ गया। भगवान से ही सारी चीजें उत्पन्न हुई है, उनके पास हर चीज है। उनके लिए आपका भौतिक चढ़ावा कोई मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है आपकी सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति ही भगवान को प्रसन्न कर सकती है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रेष्यति। यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति के साथ एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो मित्रों, अपने अहंकार को त्याग कर भगवान की शुद्ध भक्ति करो। उन्हें केवल अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करो। उनकी शरण ग्रहण करने पर भगवान स्वयं आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इस बात पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज के लिए आज्ञा। फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास। नमस्कार।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: वाओ, तेरी सब्जी दे खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट गोल्ड लीफ dairy.com।

0: attention, ladies and gentlemen. This is your captain. 30 flights, Melbourne to India या Pakistan, Sydney to India या Pakistan कितने भी जा सकती है.
1: Attention please. दिल कहता है कार जाना है. Flight search करके थक गए. Switch करो Hi-Fi Travels से. Your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book करनी है? आज ही call करो 1300-533-311 से या online book करो hifitravels.com.au से.
2: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लौना? जब वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा. सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन. ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने. हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596. गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ. आओ थोड़ा कोई हल करिए.
3: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
4: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे परदेश विच समझाऊंगा किवें?
3: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है.
5: सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने
3: इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है. ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते. सिंक स्मैश रिपेयर, 8 Grace Way, Revan Hall.

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाड़ी नाल ने ATO ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स ATO डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाड़े बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
2: टेंशन निरी टेंशन
3: की होया
2: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड्डो फोन चको कॉल करो VY इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
2: या 90-77-97-33
3: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733
3: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
2: हर कदम तुहाडे नाल।
4: ओ पाजी एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
5: हुन टेंशन छड्डो जी गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट टेंशन भी घट।
4: फिर लवाईए कित्थों?
5: सन करंट वालिया कोलों 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
4: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
6: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है ता टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच
1: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय लई। हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त तो 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लई है। डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी लई आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी on roads on us condition supply
2: kitchen the style dull lagda bathroom vanity simple jya hun tension khatam karo aa gaya ZJ stone mason tade ghar nu banaye ekdam classy assi banaune ha designer stone bench tops for kitchen stylish vanity ate modern laundry oh vi porcelain ate marble nal jithe elegance mildi hai durability nal hun na sirf kar par tuhadi personality vi shine karegi stone de style nal call karo 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन
3: स्मिथ्स लेन बाय मोवेक विच अपने भविष्य की शुरुआत करो। हुणे कदम चुको अते स्मिथ्स लेन दे चुने हुए लॉट्स दे सीमित समय ले मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स दे हाउस एंड लैंड पैकेज अजे ही मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे। होर जानकारी लई आज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नूं खत्म है।